0: बायोनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम जांग चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-581-210। थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि नीरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबई कनेक्टेड।

राम राम सुन्जिक पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2023 विभिन्न कार्यक्रम आयोजना केकिन महिना हो रहल। प्रदेश सरकारले असोज 2 ओ 3 गते सरसफाई, राष्ट्रिय झण्डा सजावट ओ दीप प्रज्वलन लगायतको कार्यक्रम गर्न निर्णय गर्लक हो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बैठक बैठकले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाएकला मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति समेत गठन राखल। बैठकले असोज 2 गते प्रदेश स्थित सक्कु सरकारी निकायसे सरसफाई कार्यक्रम संचालन गर्न निर्णय के राखल। प्रदेश राजधानी परिसरको सरसफाईमा समन्वय आन्तरिक मामिला कानून उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने बा। उही दिन प्रदेश स्थित सरकारी निकायमा निर्धारित आकारमा राष्ट्रिय झण्डा मर्यादापूर्वक धैकन कार्यालय सजिना ओ संज्ञा दीप प्रज्वलन गर्न कार्यक्रम तय गरिल बा। प्रदेशवासी हुकनकला फेन आफ्न आफ्न घरमा दीप प्रज्वलन गर अनुरोध गर्न निर्णय राखल। असोज 3 गते फे सरकारी निकायमा राष्ट्रिय झण्डा धर्ना कार्यालय सजिना ओ संज्ञा दीप प्रज्वलन गर्जिने बा। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय जिल्लामा आयोजना करिकिलक संविधान दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य सहभागिता जनिना व्यवस्था मिलेन निर्णय बैठकको राखल। प्रदेश सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रिय एकता, संविधान प्रतिको सम्मान ओ नागरिक सहभागिता सहित मनिन लागिलक हो। सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यको नक्ला प्रवाह गर्न ऋणको अधिकतम ब्याज दर 13% कायम हो रहल। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आशय लागू हुनकैकन यसै अघारीको 16% सीमाहन घटाकन लौह सन्दर्भ ब्याज दर 13% तोकलक हो। लौह ब्याज व्यवस्था अनुसार आप सहकारी 13% धुर ब्याज लिए पैने निहित कलश से बचत ओ ऋण का ब्याज दर बीच का अंतर 6% से ध्यूर हुई पैना व्यवस्था करगिल बा। उसका ऋण का ब्याज हन मूल ऋण में पूंजीगत कैकन पूंजीकृत कैकन पुनः ब्याज लगाईनी पैना ओ हरजाना रकम असूल हुईना बाकी का ब्याज का 5% से ध्यूर लिहनी पैना कार्यालय स्पष्ट पाराखल। प्रशासनिक सेवा ओ नवीकरण शुल्क का नाव में थप रकम लिहनी पाजिना ओ सक्कू लागत ब्याज दरमा समावेश हुनुपर्ने बा। संस्थाले आफ्नो सक्कु सदस्यको नक्ला समान ब्याज दर कायम गरिकन अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक कर पर्ने बा। ऋण प्रवाह करबेर रकम सिधै ऋणको व्यक्तिगत खातामा जम्मा कर पर्न निर्देशन दिगिल बा। लागू औषध ओसार प्रसार ओ बिक्री वितरण विरूद्ध प्रहरीले कड़ाई बहरेटी, प्रहरीले संचालन गर्लक विशेष अपरेशनमा एक पासा और कैकन भारी परिमाणमा लागू औषध बरामद गर्दिया राखल। उह क्रममा नेपालगंज जस्तै प्रहरीले करिब 64 ग्राम ब्राउन सुगर ओ 3 लाख सेथ्यूर नगद रकम सहित ऊ कारोबारमा संलग्न 7 जना 2 ठाउँ से पक्राउ गर सफल हो रहल। बाँकेका नेपालगंजका 2 स्थान से प्रहरीले 2 छुट्टा छुट्टै कारोबारी समूह से भारी परिमाणका लागू औषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गर्लक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके जना राखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौरका तेलक जानकारी अनुसार नेपालगंज सी काठमाडौँ जिल्ला बसमा लागू औषध पठेना काम हुतिर गोप्य सूचनाका आधारमा P1 41-60 नम्बरको बस रोकलक। खोज तलासी करबेर सुर्खेत बिरगंज 3 का प्रिन्स शाहीहन 10 ग्राम 780 मिलिग्राम ब्राउन सुगर मार्करमा नुकाकन जलेजी टिकरलक अवस्थामा पक्राउ गरिल रह। पक्राउ पर्लक शाहीसे उहो लागू औषध P1 40-73 नम्बरक सहचालक राप्ती सोनारी 1 लाहुराम थारूसे अपन देलको थारूसे ऊ लागू औषध नेपालगंज 3 का मोहम्मद रहीम अंसारी से देलक जनागिल रह। नेपालगंज 3 स्थित अंसारी को क्वाठमन खान तलाशी करबेर प्रहरीले वहां से 40 ग्राम 760 मिलीग्राम ब्राउन सुगर ओ 3,32,000 रूपया नगद सहित अंसारी हन पक्राउ करलक। सूचना अधिकारी राठौर बटवारखल।
ऊ नेपाल हुन संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव लैजाइकला नेपाल शान्ति क्षेत्र अभियान से प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गरेखल अभियान से हेलो सरकार मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहन असिन सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र फसिलो हो। प्रधानमन्त्री हुन भेट गर्नुछ या प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइकला प्रयास कर्तिरल कुहिलस देखियो असिन सम्भव निहिल पास हेलो सरकार मार्फत ज्ञापन पत्र बुझागिलक अभियानका स्वयं संयोजक दुर्जी छिरिङ शेर्पा जानकारी दिएरल ऊ ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठा सेकलक जवाब प्राप्त हुइलक संयोजक शेर्पा बटवारखल नेपाल शान्ति क्षेत्र अभियानका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार नारायण प्रसाद शर्मा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष तथा अभियानका संयोजक दुर्जी छिरिङ शेर्पा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गोपाल शिवाकोटी चिन्तन तथा पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाविद अभियानका सल्लाहकार हिरण्यलाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित ऊ ज्ञापन पत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको आसन्न 21औं महासभामा भाग लिएर बेर प्रधानमन्त्री हुन नेपाल हुन शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव लैजाइकला अनुरोध करगिल्बा ज्ञापन पत्रमा विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुन सक्कुलाक विश्वको राष्ट्र अङ्कनक्से शान्ति क्षेत्र घोषणा गर सक्कु विश्वमा शान्ति कायम करकलाक बौद्ध दर्शन तथा शिक्षा विश्वव्यापी रूपमा फैलाइकला संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्को दक्षिण एसियाली राष्ट्रको क्षेत्रीय संगठन सार्क ओ दक्षिण पूर्वी राष्ट्रको संगठन आसियान लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनका साथ ओ समर्थनका हासिल गर्न ओ विश्वभरको जो विद्यालय से विश्वविद्यालय हुइती हरेक घर परिवार व समाजसम्म बौद्ध दर्शन व शिक्षाबारे आवश्यक शिक्षा तालिम व प्रचारका कार्यक्रम हन ओ लुम्बिनी हन एक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मध्यस्थता केन्द्र तथा विश्व शान्ति शहरको रूपमा विकास गर्न कैकन प्रस्ताव लैजाइकला अनुरोध करगिलक अभियानका संयोजक नारायण प्रसाद शर्मा जानकारी दिएरखल। हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने भाटी अखस खबर मसे समाचार कक्षको सक्खु संग्रहसँग म शालिक राम चौधरी विदाहिरू रिडी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर बसंत खत्री अब हरेक दिन दिव्य फार्मेसी घोराई दाङमा
2: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
1: नवजात शिशु तथा बाल बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण
2: बाल बालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँच
1: ज्वरो रुगाखोकी तथा संक्रमणको उपचार
2: पोषण तथा वृद्धि विकास सम्बन्धी परामर्श
1: खोप सम्बन्धी परामर्श
2: नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेरचाह
1: बाल बालिका सामान्य तथा दीर्घ रोगको उपचार
2: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ
1: सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 98-478-28913 98-478-26163।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: प्रोडक्टहरू कोकोनट, सोकोनट, भिटा मिल्क, बटर प्राइड, क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट।
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस, कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस।
0: अडगुरी।

0: आकाश गंगाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञान धाराको प्रसारण, कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू, कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: गुरु वन्दन अखण्ड मण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तदपदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरम् जङ्गम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तदपदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयम् व्यपितम् सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तदपदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजितम् पदाम्बुज वेदान्ताम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम् शाश्वतम् शान्तम् व्योमातीतम् निरञ्जनः बिन्दुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषितम् भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकम् जन्म सम्प्राप्त कर्म बन्ध विदाहिन आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणम् भवसिन्धुश्च ज्ञानपम् सारसम्पद गुरुर्पादोदकम् सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकम् तत्त्वम् न गुरोरधिकम् तपः तत्त्वज्ञानात् परम् नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर आदिर अनादिश्च गुरुर परम दैवतम् गुरु परतरम् नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुर्पदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुर्कृपः। गुरु वन्दन नमस्कार। प्रकृति र संस्कृतिका अणिमा महिमा गरिमा बारे बयान गरिने प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी श्रोता स्वागतका लागि उपस्थित भएका छौं। आजको यस समय आँगनमा हामी गुरु गरिमाका शब्दको विस्कुन सुकाउनेछौं, फिजाउनेछौं। आरम्भमा भने यो सांगीतिक सामग्री